बिन सिमरन भय कुकर काम। सिमरन तो बिना ये इंसान नहीं, काम ही कुत्ता है। आख्या कहने ने जून को अगरे बिन सिमरन भय कुकर काम। साकत

0: दुख जाए पौड़ी।
1: सेव कीती संतोखी जिन सचो सच त्याया, उन्हें मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया।

जंत पाए कह संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता विकरणीता सो करता चिंता करे जिन अपाया जग तिस जुहारी सा तिस

सचो सच वरताया जिस तू ने तिस वेले सच तो तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया।

श्री दरज तै का जुर अगर थवाओ द्वापरत में का सत अगर थवाओ कर्ज रथ अग्न का कूड़ अगर थवाओ शाम कैसे तुम्र स्वामी।

जय जान स्मरम कर्म सफो कट नचो कर्म तो नानक नचो जावे बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना।

जित मुकसदा सलाहिए पागरती चार नानक तिम कुजले ते सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिसना।

साहिब गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, जिथे सारे भगतां नूं सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करदे ने, कहंदे ने हे प्रभु, ए संसार एक समुंदर है, ए समुंदर विच कहंदे ने जदों देवतियां ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढे, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पानी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहंदे ने हे मालिक,

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार हो के

मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना वर्त तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचत। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी दा मालक दुर्भाषा ऋषि, चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद है, हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा, मैं वचन दिता है, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारिया की सलाह से भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा ऋषि आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते हैं,

परमेश्वर, जिस तरह उन्हें भगत अमरीक की रक्षा की थी, नाउ निधि ठाकर दई सुदामे त्रू अटल अजूना टरियो, अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की थी, त्रू भगत ते कृपा की थी, भगत हेत मारियो हरनाकश, भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाक्ष का अंत किया, नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते ने केसव परमेश्वर नू के है, सोने केसा वाला परमेश्वर, ये वो जरा परमेश्वर है वो भगतों के वास्ते है, इस वास्ते तो अज तक वो बल राज के द्वारे से खलोता होया है। तो गुरु साहब जी भी बाणी विच कहंदे ने भाई अमरीक ने सिमरन किया, राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी, ते अभय पद नू प्राप्त हो गया। आओ भाई तुस भी सिमरन करो, दुनिया दे काम कार करदियां अते अपने जीवन नू

0: एक ओंकार,
1: गॉड इज ओनली वन,
0: सत नाम,
1: हिज नेम इज ट्रू,
0: कर्ता पुरख,
1: ही इज द क्रिएटर,
0: निर्भय,
1: ही इज विदाउट फियर,
0: निर्वैर,
1: ही इज इनिमिकल टू नन,
0: अकाल मूर्त,
1: ही नेवर डाइज,
0: अजूनी,
1: ही इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ,
0: सैभंग,
1: ही इज सेल्फ इलिमिनेटेड,
0: गुरु प्रसाद,
1: ही इज रियलाइज्ड बाय द काइंडनेस ऑफ द ट्रू गुरु,
0: जप,
1: रिपीट हिज नेम.

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हों त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। मोढ़े वस्त्र काजर में

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

जेड़े बख्शिश कीती है मालक ने सानू पंज इंद्रे कर्म इंद्रे पंज ज्ञान इंद्रे इन्हां विच्चों अख दा नक दा कन दा रसना दा उचारण कीता है भाई सारा दिन अखां वेंदियां रहिंदियां ने थकदियां ही नहीं पर किते गुरु के दर्शन करने पै जाण गुरुद्वारे जाना पै जावे कन्ना नू किते कीर्तन सुनना पै जावे उकसा जाणगे ते चुगली निंदा वाले पासे दौड़दे ने भाई साहब कहिंदे ने दर्शनां नू किते वाहिगुरु जपना पै जाए ते पता नहीं की हो जांदा है ते जे सारा दिन इहनू छकांदे रहिए ते थकदी कोई नहीं तां साहिब सच्चे पातशाह जी दे अनन सेवक भाई साहब भाई गुरदास ने सानू समझाउण दा यतन कीता है भाई साहब कहिंदे ने रज ना कोई जीविया कूड़े परवासे ते जे जिंदगी च सफल होना चाहुंदा है जिंदगी च प्रफुल्लित होना चाहुंदा है ते इक

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना वांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है ते आम जिन्हां सजना जां भैणां नू ताल सुर दी समझ ना होवे ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होगी जे भैणां जां वीर लै सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज नाल बोलन ते नहीं तां प्यार नाल सरवण करना इस शब्द दे विचों बहुत कुछ मिलना है।

जी बदो मुल्ला कहो ने आओ खुदाई, जी बदो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, जी बदो सो धर्म

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितारदा अवगुण को न चितारदा गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई। मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता, यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया। उस विच सांझी गुरु नाल

मन बाच सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख

अंदर कौतक वरता रहे। ब्यौड़ी च भाई पुराणा जी बैठे, दर्शन करन नूं चित कीता, उठे सलाखां दे परले पासे निगाह गई। सारा दिन मगदी रही अग दी रोशनी विच वेखे, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले। सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सलाखां नूं सिखां नूं फड़िया, जोर दी झटका मारिया। साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहब कहंदे ने, वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे, सिर धर मन करे शुकराना। भाई गुरदास जी, भाई पराणा मालक दी रचना है, जो कर रहे हैं मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहा, तेरे कोलों नहीं सहा, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा। पातशाह मैनू तुसी आग्या दिओ, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे, कह लगे, भाई पुराणा जितन फना करना होगा, जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना करन दा फिक्र कित्थों पै गया, तू फना करन दीआं ताकतां कित्थों आ गई तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहब हस के कहंदे ने, भाई पुराणा जे मेरे चरणा चो तबाह करन दीआं ताकतां तेरे कोल आईआं ने, ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पुराणा, आपां कुछ करता पुरख दी रचना विच कुछ बना सकीए, कुछ उसार सकीए, ते गल वखरी है। तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, उहदी रज़ा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पुराणे दे मोढे ते रखिया। ओ जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी, सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्हां ने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया, बड़ा मारिया, पर मालक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहब दी बख्शिश कीती, सहनशीलता सदका फिर भाई पुराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी। वाहिगुरू वाहिगुरू जपदिया होया बिसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी, क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना, ते फिर हाए नहीं मुंहों निकलदी, शुक्र मुंहों निकलदा है।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चों नाल गलबात पंजाबी विच करते हो तो आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चों पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां इह समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकंगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकंगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकंगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असीं तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है तां ध्यान दियो ते ओह पूरी करो। आप जितनियां वध तों वध जवानां बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।